टाशी दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 18 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री संगे बोम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री कामे यम्फो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री हिमांतो स्वर्गरी, मनपा उद्घोषक श्री लुप्सम तुप्तिन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका केंदन खामू। आकाशवाणी तावंग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिडडे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम-1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम-1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम-1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन दी हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज

0: से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है, बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी।

0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए देवशीष दास गुप्ता के आवाज में कबीर अमृतवाणी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना देवशीष दास गुप्ता से कबीर अमृतवाणी। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए केंगलिंग केंगलिंग जोशिम लॉन्फी, कोचम लंगवी, लिसा मोसंग और मुंगतंग मोसंग के आवाजों में चंद आधुनिक तंसा गीतों का।

श्रोतों, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक तांसा गीतों का। केंगलिंग केंगलंग, जोशम लंफी, कोचुंग लुंगरी, लीसा मोसंग और मुंगतंग मोसंग के आवाजों में, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। लीजिए श्रोतों, कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकारों के आवाजों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया किंगलिंग किंगलंग जोशम लोंगफी कोचम लोंगवी लीसा मोसांग और मुंगतांग मोसांग की आवाजों में चंद आधुनिक तांगसा गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए दर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वें सत्र के छात्रा तिनसिन छोटन से आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व विषय पर उनके विचार।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और दशी दिलक। मैं तिनसिन छोटन दर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वें सत्र की छात्रा आज यहाँ आज की दुनिया में शिक्षा के महत्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे सोचने समझने और दुनिया को देखने का तरीका भी बदलती है। आज के समय में शिक्षा एक ऐसी चाबी बन चुकी

0: होती है जो हमारे सामने अनगिनत अवसरों के दरवाजे खोलती है। जहाँ पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना था, वही आज शिक्षा हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगी, आज कई लोग शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित कर देते हैं। डिग्री मिल जाना सिर्फ एक प्रमाण है, वास्तविक शिक्षा हमारे व्यवहार में, हमारे रवैये में, हमारी समझ और हमारे ज्ञान में दिखाई देती है। आज की दुनिया में सफल होने के लिए केवल कागज की डिग्री काफी नहीं है। हम सबने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि कई लोगों के पास डिग्रियां तो है लेकिन कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव से वे आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी समझ में असली शिक्षा वह है जो इंसान के स्वभाव को विनम्र बनाती है, उसकी सोच को विस्तार देती है और उसे कठिन परिस्थितियों में भी संयम, सम्मान और समझदारी से काम लेना सिखाती है। हमारे तवांग जैसे सुंदर और सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा का महत्व और भी गहरा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ शिक्षा सिर्फ करियर का रास्ता नहीं है, यह हमारे लिए अवसरों का पुल है जो हमें हमारी जड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान से जोड़ते हुए हमें आधुनिक दुनिया से भी जोड़ता है। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी उतनी ही ऊंचाई दे जितनी हमारे पर्वतों की है। और सच कहूँ तो शिक्षा जीवन को सिर्फ बदलती नहीं, जीवन को एक दिशा देती है, एक उद्देश्य देती है। कभी कभी शिक्षक का सरल सा वाक्य, किसी किताब की एक लाइन या किसी विषय को समझते समय मिलने वाली छोटी सी खुशी हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं, हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। शिक्षा हमें संवेदनशील बनाती है, दूसरों को समझने की क्षमता देती है, यह हमें अपने सपनों के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाती है। और एक शिक्षित समाज की खूबसूरती यही है, जहाँ विकास के साथ साथ मानवतावाद भी बढ़े। आज जब दुनिया इतनी जुड़ चुकी है कि एक छोटी सी जानकारी भी पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाती है, ऐसे समय में शिक्षा हमें स्थिर रखती है, समझदारी देती है और यह विश्वास देती है कि हम भी इस बदलती दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि मिलती है पर शिक्षा से दिशा मिलती है। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वें सत्र के छात्रा तेंजिन छोटन से आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व विषय पर उनके विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो चलिए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को, जिसके तहत हम आनंद लेंगे चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जो कि है नारियों पर केंद्रित। तो लीजिए, पहला नगमा प्रस्तुत है महाराज फिल्म से मोनाली ठाकुर के आवाज में। गीत के बोल है कौशल मुनीर के और संगीत सुहेल सेन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का दूसरा नगमा प्रस्तुत है आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोनू मोहापात्रा की आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है कुमार ने और संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा लीजिए प्रस्तुत है कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है SH बिहारी ने और संगीतबद्ध OP मैयर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद नगमों का, जो कि थे महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी संगीत के तहत। इसी के साथ कार्यक्रम नारी संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। श्रोतम, हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, चलिए अब आरंभ करते हैं आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों के कार्यक्रम गीत मंजरी को। लीजिए पहला नगमा कार्यक्रम गीत मंजरी का, प्रस्तुत है तेरे नाल लव हो गया फिल्म से आतिफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पंचाल के आवाजों में। गीत के बोल है मयूर पुरी के और संगीत सचिन जिगर का।

हिना फिल्म से श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम का दूसरा नगमा, मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के आवाजों में। इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है रविंद्र जैन।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया नीरज श्रीधर की आवाज में एक गीत का, जिसे रचा है कुमार ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने, और यह गीत रहा तुम मिले फिल्म से। लीजिए कार्यक्रम गीत मंजरी का अगला गीत प्रस्तुत है वेकअप सिट फिल्म से कविता सेठ की आवाज में। इस गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लोई का।

श्रोताओ कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का, जिसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। तो आइए इस गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल के आवाज में एक गीत, जिसे रचा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सवारा है अजय गोगावले और अतुल गोगावले ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अगला नगमा प्रस्तुत है। एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसोजा और सुजैन डिमेलो के आवाजों में। जावेद अख्तर द्वारा शब्दों में पिरोए गए इस गीत को संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है सोनू निगम, कुणाल गांजावाला और सुजी क्यू के आवाजों में पार्टनर फिल्म से। इस गीत को शब्द दिया है शब्बीर अहमद ने और संगीत साजिद वाजिद ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए अली अकबर खान से सरोद वादन का। राग है मांझ खमझ।

श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे अली अकबर खान से सरोद वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। श्रोताओं अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरोट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्व

थोनशन बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। उपराष्ट्रपति सीवी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नए अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस की रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। यह रेलगाड़ी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिरों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्र के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस पोस्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकाने में घुसकर भी उन्हें मारेगा। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की भी संकल्प लिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल के 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़े कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।

0: मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में सहयोग की अपील करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हेवियर एडवर्डो मार्टिन आज वर्सिज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल भारत पहुंच रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2300 ग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सर्वोस के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संपन्न परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। वे विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षा की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्तीय सुशासन, वित्तीय संवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेटिव इंडिया माईगोव पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता को माईगोव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संचित अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूकी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी बन गई है। फुटबॉल विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its first burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। इसके तहत सबसे पहले सुनिए उपायुक्त सिट्रोचे तवांग के कार्यालय द्वारा जारी यातायात परामर्श। तवांग जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता और सभी यात्रियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम की स्थिति सामान्य होने तक विशेषकर रात्रि के समय बलीपारा चारद्वार तवांग बीटीसी मार्ग तथा ओरांग खलकतांग शेरगांव रूपाटेंगा ओकेएसआरटी मार्ग पर यात्रा करने से बचे। लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, चट्टानों और मलबा गिरने, सड़क अवरुद्ध होने, दृश्यता कम होने तथा यातायात बाधित होने की संभावना बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सभी यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा केवल आवश्यक होने पर करें, यथासंभव दिन के समय करें। यात्रा से पहले सड़क और मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। जिला प्रशासन, पुलिस, बीआरओ और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। यह परामर्श अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। श्रोताओं, जिला प्रशासन द्वारा जनहित में जारी यातायात परामर्श समाप्त हुआ। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए केशी थुप्तन केदुन से दिनबा शी का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार आज शाम 7:00, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे DRCHO सह डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तवांग डॉ. रिंचिन नीमा से हुए एक साक्षात्कार।

सुरों और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज़ो और आवाज़ के तहत आनंद लीजिए। हाउस नंबर 44 तथा गाइड फिल्मों से दो गीतों के साज़ और आवाज़ का आज शाम 7:32 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम कौमे तराने के तहत आनंद लीजिए। दिल जले फिल्म से कुमार सानू और आदित्य नारायण के आवाजों में एक देशभक्ति गीत का, आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें आज शामिल है मेरी सूरत तेरी आंखें, क्रांति और गृह प्रवेश फिल्मों से चंद नगमे। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील आज रात्रि 8:15 पर। 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9 बजे। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 19 जुलाई 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ, जिसके पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए तावंग मठ के लामा पेम्पा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए चंद आधुनिक मणिपुरी गीतों का कल दोपहर 3 बजे। 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जयनवी तावंग के 8वीं कक्षा के छात्रा ये शीलहानों से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर एक वार्ता। कार्यक्रम नारी संगीत के तहत आनंद लीजिए चंद महिलाओं पर केंद्रित हिंदी फिल्मी नगमों का कल दोपहर 3:33 पर। कल शाम 4 बजे युवाओं पर केंद्रित मासिक कार्यक्रम युवावाणी के तहत सुनिए मिस्टर अरुणाचल 2025 के फर्स्ट रनर अप श्री तंजिन दलेक से हुए एक साक्षात्कार। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम रागरंग कल शाम 4:30 पर। कल शाम 4:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5 बजे दैनिक मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम के तहत सुनिए प्रसिद्ध भारतीय आचार्य शांति देव द्वारा रचित अ गाइड टू द बोधिसत्वास वे ऑफ लाइफ रचना पर आधारित शिक्षा श्रृंखला। श्री थुपतन ताशी से दैनिक मुख्य सूचना मनपा में कल शाम 5:30 पर। 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्षुम लेरिम लेरिम सिरा कल शाम 6 बजे 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुन लेरिम के तहत सुनिए गेलोंग जंबा वांचू और साथियों से जुड़वा छुड़ुक। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7 बजे, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली के तहत आनंद लीजिए सलमान अली और मोहम्मद रफी के आवाजों में दो कव्वालियों का। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ के तहत सुनिए माया सुखठंकर से कोंकणी भाषा में हिमगिरी रे गीत का पाठ कल शाम 7:25 पर। 7:45 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम

देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए। स्वदेश फिल्म से एआर रहमान के आवाज में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि आठ बजकर तीस मिनट पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा News@9 रात्रि 9 बजे। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना एक जरूरी सूचना तथा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं सूचना और कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम झरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम शीतुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरो स्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयर स्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछ स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने एक पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर चर्चा हुई। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार कन्नड़ भाषा की पुस्तक नानी रुविदे निमा गागी नादी रुविदे नाना गागी के लिए प्रदीप कुमार शेट्टी को दिया जाएगा। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।

0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कंग को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक और आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हरा दिया। दूसरे गेम में चेन युफेई की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 72nd National Film Awards were announced today. The Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. The award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book. In the non-feature film category, Shivpal Singh Kang will get Best Music Direction Award for Parath 41, Digrachay Magavar. Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity, Ekta Ka Prateek. Best Short Film is Humsafar in Marathi. The Best Non-Feature Film is Bangar, directed by Sumira Roy. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gadrad Road in Ahmedabad. Our correspondent reports that the Rapid Action Force personnel rushed to the site immediately and retrieved the dead bodies and rescued the trapped and injured workers from the blazing structures. Several firefighting vehicles also rushed to the spot and brought the blaze under control. Cooling operations are currently underway. The injured have been admitted to nearby hospitals for treatment. Expressing deep condolences, Chief Minister Bhupendra Patel termed the incident extremely tragic and prayed for the deceased and the speedy recovery of the injured. The Chief Minister announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next of the kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. Police, along with local rescue teams and villagers, launched a search operation after receiving information about the incident. The bodies of all the 5 victims were recovered from the river. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. India's first privately developed orbital rocket Vikram-1 under Mission Agaman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the 3rd country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephonic call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram-1 under Mission Agaman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector.
2: पवन भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र

0: Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram 1. The minister said the mission marks a major milestone for India's expanding private space sector. The Indian Olympic Association, IOA, today announced that Olympic medalists Meerabai Chanu and Lavlina Borgohai will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled-down multi-sport event will be held on the 23rd of this month at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said, the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport. And in a FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके तहत सुनिए डिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉ रिंचिंग नीमा से टीकाकरण का महत्व विषय पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दोषी ड्रामा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है डिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर तवांग डॉक्टर रिंजन नीमा जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका एक बार फिर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: जी तो श्रोताओं, आपको जरूर याद होंगे कि डॉक्टर साहब का आज हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी डॉक्टर साहब ने हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल हुए और आप श्रोताओं को बहुत ही जरूरी जानकारियां पहुंचाए थे। तो आज फिर हमने एक बहुत ही विशेष विषय चुने हैं डॉक्टर साहब से चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताए थे कि डॉक्टर साहब DRCHO कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर पद को संभाल रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से ये चर्चा करेंगे कि टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण शरीर को बीमारी से कैसे बचाता है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए टीके जरूरी होते हैं, या टीकाकरण न कराने पर क्या जोखिम हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है और इस समय तवांग की क्या स्थिति है टीकाकरण को लेकर।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया है कि स्वास्थ्य के बारे में कई बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला है, तो इसमें जैसे कि आपको पता है टीकाकरण जो हमारे बहुत सारा डिजीज यानी आपका बीमारियों को रोकथाम करने का सबसे पहले तो जो टीकाकरण का जो इम्पोर्टेंस है, हर जो टीकाकरण लेते हैं या किसी को देते हैं तो उसका सिर्फ जो टीकाकरण प्राप्त होता है उसी का प्रोटेक्शन नहीं बल्कि उसका जनरेशन तक जो बीमार है उसको रोकथाम करने में सक्षम होता है। हमारे तवांग में वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज बहुत अच्छा है। अभी ऐसे कोई बच्चा नहीं जो कि अनवैक्सीनेटेड, एक दो बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, किसी कारण ले नहीं पाए, तो हम उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन ढूंढा है अपने ओर से, अपने डिपार्टमेंट के ओर से, और हम अपना स्टाफ लगा के हर जगह में जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगाया है तो उन लोग तक पहुंचने का पूरा साधन बना है। और आपको ये बता दूं कि तवांग एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो हमें काफी दिक्कत आता है कि यहाँ कोई भी वैक्सीनेशन जब हम या स्पेशल वैक्सीनेशन कैंपेन करता है या कोई भी वैक्सीनेशन का जो कैंपेन मोड में करता है तो यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जो हम लोग टूरिस्ट लोगों को भी हम लोग टारगेट करके वैक्सीन लगाए कि नहीं लगाए उसके हम लोग ढूंढने का, या तो वैक्सीन नहीं लगाए तो उन लोगों को देने का कोशिश करते हैं। तो हमारा टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण हम लोग का टूरिस्ट एंट्री पॉइंट जैसे कि आपका सेला के नीचे जंग है, जंग का हम लोग टीम लगा के वहाँ पे उन लोगों को वैक्सीनेशन का स्टेटस पूछ के वैक्सीन लगाने का टारगेट कर, या हमारा यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है या कुछ भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो भूटान साइड से भी हम लोग आए इन्फ्लक्स, तो हम लोग हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि कोई अनवैक्सीनेटेड या कोई भी जो पोटेंशियली जो कोई डिजीज लेके आने का खतरा हो सकता है उन लोगों को भी हम लोग वैक्सीनेशन दे के यहाँ से भेजने का कोशिश करते।
2: सरकार ने

0: बहुत ही अच्छे अच्छे जरूरी सुविधाएं हमें पहले से ही प्रदान कर रखे हैं, और
1: जी
0: साथ साथ आपके स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पूरे 100% कोशिश करते हैं, लोगों को जागरूकता कार्यक्रम से रूबरू कराते हैं।
1: जी
0: तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे तवांग के लोग जो है,
1: जी
0: माता पिताएं जो है, ये जो टीकाकरण के महत्व, स्वास्थ्य के जो महत्व है, इसके बारे में कितने जागरूक है, वो कितने जानते हैं, या फिर आपको आज भी वही दिक्कतें आते हैं, उनको समझाने पड़ते हैं?
1: मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है वो लोग खुद जो हम लोग टीकाकरण दिलवाते हैं या हमारा जो मेडिकल स्टाफ है उन लोगों को टाइम टू टाइम हम लोग ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करता है, ताकि जो टीकाकरण का जो बच्चे तक जो हम टीकाकरण देते हैं वो सही रूप से पहुंचाए
0: जी जी
1: और सही तरीका से दे। तो हम लोग अपना स्टाफ को सबसे पहले तो हम लोग ध्यान में रखते हैं कि वो लोग पूरा ट्रेंड एंड वेल ओरिएंटेड हो। और दूसरा बात है कि जैसे आपने अभी पूछा है कि यहाँ के जो पेरेंट्स है, यहाँ का जो माता पिता है वो लोग जागरूक है कि नहीं। हाँ, मैं ये बताऊंगा कि तवांग के जो अभी माता पिता है, जो यंग जनरेशन, सब लोग इसके ऊपर काफी अमल किया है, ध्यान देते हैं और दे आर वेरी वेल ओरिएंटेड। और 100% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 99% पेरेंट्स आर वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी पेरेंट्स है
0: जी,
1: कि मैं
0: जी
1: ये बताना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि उन लोग भी, एक दो पेरेंट्स है जो बच्चों को टीकाकरण नहीं लेना चाहता है
0: जी,
1: या उन
0: जी,
1: लोग
0: जी,
1: मना करते हैं, तो मैं इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है तो हमें एक दो जगह जो बहुत ही इंटीरियर है, ऐसे दो तीन गांव है, उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहाँ एक दो माता पिता है जो अपने बच्चों को कुछ कारण से टीकाकरण नहीं लिया है। तो मैं 100% यहाँ में अचीवमेंट नहीं कहूंगा, लेकिन 1-2% पेरेंट्स है जो टीकाकरण लेने में मना करते
0: हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सभी आप देख सकते हैं कि पहले की तुलना में बच्चे की मृत्यु जो है बहुत ही कम होने लगे हैं, कम हुए मतलब ना के बराबर होते हैं। पहले के जमाने में हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि उनके बच्चे जन्म के दौरान ही मृत्यु हो या फिर किसी बीमारी से मृत्यु हो गए थे। तो आजकल ये सारे समस्याएं इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सरकार ने हमारे लिए इतने अच्छे सुविधाएं प्रदान करके रखे हैं स्वास्थ्य को लेकर, और साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से हमें सेवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, 100% सेवा पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर डॉक्टर साहब, आपने हमें ये बताएं कि कुछ माता पिताएं अब भी ऐसी हैं जो अपने कोई निजी विचार को लेकर अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने चाहते हैं। तो मैं चाहती हूं आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको ये बताएं कि बच्चे को टीकाकरण नहीं लगवाने पर उनको क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, आगे चलकर जीवन में क्या समस्याएं आ सकते हैं।
1: तो ये बता दूं कि जो टीकाकरण है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हम लोग कई सारा जो बीमारी है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टीकाकरण दिलाते हैं। तो देखिए, ये जो नहीं लेने का भी कोई रीजन होता है, या तो एक रिलीजियस रीजन, या तो आपका कोई अंधविश्वास
0: जी जी जी,
1: या तो कोई ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि वैक्सीन लगा के कुछ बीमार हो गया, या कोई रॉन्ग नोशन या कोई गलत मैसेज पहुंचा है, तो उससे डर के वो लोग नहीं लेता हो। तो मुझे एक तो पेरेंट्स से बात करना पड़ा है जो वैक्सीन लेना नहीं चाहता। तो ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारा पेरेंट्स जो जिन्होंने मना किया वो बिल्कुल मना करके नहीं लिया, ऐसे भी नहीं। मुझे कई इंटीरियर विलेज तक जाके माता पिता को मना के मैंने वैक्सीन दिलाया, एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ, दे आर ओके विद दैट, वो लोग खुश है। लेकिन आज का डेट में 2-3 पेरेंट्स ऐसे भी है जो बिल्कुल नहीं माना। मैंने थ्रू अपना रिलीजियस लीडर, गांव का जो हेड है
0: जी जी,
1: जो पुजारी है, उन लोगों का थ्रू भी उन लोगों से डिस्कस कर उन लोगों को मनाने का कोशिश किया है, और या तो हम लोग का जो हेल्थ डिपार्टमेंट से अपना नर्स या डॉक्टर को भेज के भी डिस्कस किया है, या तो हम लोग ने यहाँ पे पंचायत लीडर, पंचायती राज का जो लीडर्स है उन लोगों को भी हम लोग रिक्वेस्ट करके मनाया। 99.9% तो हम लोग का यहाँ पे वैक्सीनेटेड है
0: जी जी।
1: तो एक दो पेरेंट्स बच्चा जो है बिल्कुल नहीं मान रहा, उसका रीजन ये बताया है कि उसका बच्चा बहुत वीक है या बीमार है, उसका वजह से नहीं लेना चाहता। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। जो बच्चा वीक है, अगर उसको मेडिकली लेने का सिचुएशन नहीं होता तो डॉक्टर या नर्स उसको बताएंगे, लेकिन अपना खुद से डिसाइड कर लिया मेरा बच्चा बहुत कमजोर है या बीमार है, इसका वजह से अगर इंजेक्शन या टीकाकरण ले लेता तो और ज्यादा बीमार हो जाओ, ऐसे वो बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग सबको ये चर्चा के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन टीकाकरण जो देते हैं या वैक्सीन हम लोग देते हैं उससे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो आपको बल्कि जो बीमार के लिए दिया जाता है तो बीमार को आपका लाइफ टाइम के लिए प्रिवेंट करता है। तो ये बता देता हूँ कि मैं 100 में 100% प्रिवेंट नहीं होता है, लेकिन 99.9% उसको प्रिवेंशन में सक्षम रहता है। उससे बहुत सारा बच्चा को जो वैक्सीन दिया गया उससे वो हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलता है। तो

0: रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जो भी मेरे आवाज सुन रहे हैं या आप दोनों का जो चर्चा सुन रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा चर्चा से उन लोग प्रभावित हो गया, अगर जिन्होंने भी नहीं लिया हो तो मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन लीजिए, ये टीकाकरण लीजिए, ताकि आपका बच्चा कभी इन फ्यूचर में ये सब जो प्रिवेंटेबल डिजीज तो इससे आपको पीड़ित ना हो।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने भी कई बार ऐसे कहते हुए सुना कि उनके बच्चे अगर टीकाकरण लगवाते हैं तो उनको बहुत तेज बुखार होते हैं या फिर सो नहीं पाते हैं या फिर बहुत बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या सचमुच टीकाकरण लगवाने के बाद ऐसी कोई समस्या आते हैं डॉक्टर साहब? अगर आते हैं तो ये कितने साधारण है, मैं आपसे सुनना चाहूंगी।
0: मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये आपका जो वैक्सीन या टीका हम लोग देते हैं तो उसमें आप आफ्टर इम्यूनाइजेशन तो उसमें आपका माइनर इफेक्ट होता है, जैसे आपने बताया बुखार या दर्द या लाल होना या इंजेक्शन साइड में लाल होना या थोड़ा बुखार या बदन थोड़ा दर्द होना, वो हो सकता है।
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: एक दवाई डालते हैं जिससे उसका ये होने से उसका वैक्सीन इवन पोटेंट है, उसका शरीर में काम कर रहा है, वो इसका एक संकेत है।
1: जी, जी,
0: तो ये नहीं कि वो अगर बुखार होता है तो हम लोग उसको एडवाइस करते हैं कि आपका बच्चा को ये अगर टीका लगाए तो थोड़ा बुखार होगा या थोड़ा दर्द होगा या इंजेक्शन साइट में थोड़ा लाल हो जाएगा, इससे डरने का नहीं है। इससे आपको माइनर EFI है, ये माइनर इफेक्ट है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि आपका बड़ा आदमी भी अगर बीमार हो जाता है तो इंजेक्शन साइट में थोड़ा दर्द होता है, लाल होता है, वो तो आपका नॉर्मल है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये सब चीज से डरना नहीं है। मैं को ये बताना चाहूंगा कि ये माइनर इफेक्ट होता है वैक्सीन से, लेकिन इसमें डरने का कुछ नहीं है। अगर ये होता है तो आपका शरीर में वो दवाई काम करता है।
1: जी,
0: तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं।
1: जी जी, और डॉक्टर साहब जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे तवंग जिला के अंदर बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज है जहाँ पे कर्मचारी जो है पूरे समय तैनात होते हैं, तो वो जो है नियमित रूप से एक टीकाकरण के जो शेड्यूल रखते हैं, तो उस डेट को उन बच्चों को लेकर सारे पेरेंट्स लेकर आने होते हैं। तो उस दौरान किसी बच्चे थोड़े से बीमार होते हैं, अगर जब वो बच्चे उसी तारीख को बीमार पड़ते हैं तो उस समय जो है वैक्सीन लगवाना कितना सही है, लगवा सकते हैं या नहीं?
0: वैक्सीनेशन जो आप टाइम टू टाइम उसका, सपोज एक बच्चों को आज वैक्सीन दिया है तो एक महीना बाद फिर लाने के लिए उसको बताया जाता है। तो उस समय में अगर उसका हेल्थ ठीक नहीं है या कोई कारण कुछ बुखार हो गया या उसका कुछ शरीर ठीक नहीं है, तो डॉक्टर का पास या तो नर्स का पास जाएगा, वो देख लेगा, पहले चेक कर लेगा, आप बताइए कि ये बुखार है इस तरह से या डायरिया है या उसका शरीर ठीक नहीं, आज लगवाना ठीक है कि नहीं। अगर वो चेक करे उसमें माइनर है तो लगवा सकते हैं, अगर उसका शरीर बिल्कुल ही ठीक नहीं या लगाने का वो सिचुएशन नहीं है तो वो डॉक्टर या नर्स वहां पे बता देगा कि आपको दो दिन बाद लाइए या नेक्स्ट हफ्ते लाइए। उसमें कुछ नहीं है कि आपका डेट अगर आज 28 को ही लगाना है, आज 28 को लगाए नेक्स्ट 28 को ही लगाना है, ऐसे नहीं कि वो 28 को ही लगाना है, हो सकता है तो उस टाइम में लगाना। अगर कुछ कारण से अगर उसको वैक्सीन लगाने का उसका बॉडी जो फिट नहीं है तो अगर एक हफ्ता बाद भी लगा सकता है, ऐसे नहीं कि वो वैक्सीन उसी दिन नहीं लगाएगा तो काम नहीं करेगा।
1: अच्छा,
0: या उसका बदन में वो वैक्सीन जो कुछ अलग रूप से काम उसको इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो वो तो आपका जैसे कि मैं बताया पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा जो हेल्थ स्टाफ है जैसे नर्स डॉक्टर, वो लोग टाइम टू टाइम हम लोग इसके ऊपर ओरिएंटेशन करते हैं, ट्रेनिंग करता है, और उसके ऊपर में कुछ भी डिस्कशन होता है या उसको ट्रेनिंग देना होता है तो हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम एक्सपर्ट लोग ट्रेनिंग देते हैं। और ताकि हमारा जो बच्चे बेनिफिशियरीज जो टीकाकरण का बेनिफिशियरीज जिसको टीकाकरण मिलना है उसको सही मिले, सही दवा मिले और सही रूट मिले और सही टीकाकरण मिले।
1: जी जी, क्योंकि उसी तारीख को अगर कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं तो घर पर अपने आप से निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि डॉक्टर और नर्सेस हमेशा वहां पर तैनात होते हैं, जहां पर जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर लेकर आए और उनके सलाह जरूर सुने, है ना? जी, और डॉक्टर साहब जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे तवंग जो है बहुत ही ठंड जगह है और हर जगह हर समय कोई पहुंच पाना, डॉक्टर या नर्स भी पहुंच पाना थोड़ी सी मुश्किल उनको भी होते हैं, हालांकि वो कोशिश पूरे करते हैं, लेकिन हमारे तवंग में कुछ जगहें ऐसी भी है जहां पर बहुत ही दूर दराज में लोग रहते हैं, नोमैड्स रहते हैं, उनके घर वही होते हैं और नेटवर्क की सुविधा हर समय नहीं रहते हैं। कभी कोई बच्चे घर पर पैदा होते हैं, होम डिलीवरी होते हैं, तो उनको जन्म के साथ साथ टीकाकरण तो लगवाने होते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे पैदा होकर एक महीने हो चुके तो उनका टीकाकरण तो रह गया होता है, तब आपको पता चलते हैं। तो आप क्या करते हैं, किस तरह से उनके टीकाकरण जो है सही तरह से लगवाते हैं?
0: देखिए, आज का डेट में, आज के समय में तवंग एक ऐसे जगह है जहाँ पे लगभग 100% विलेज रोड कनेक्टिविटी आ चुका है।
1: जी जी।
0: और एक दो बस्ती जैसे लुगुथांग है वहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचा,

0: बाकी जैसे मागो हो गया, तकसंग हो गया, और ऑलमोस्ट 100% जगह पे आपका नेटवर्क भी पहुंच चुका है और गाड़ी रास्ता भी पहुंचा। आपने जैसे बताया कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं होने के कारण हेल्थ स्टाफ नहीं पहुंच पाता है या जो बेनिफिशियरीज है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, ऐसे एक दो जगह है जहाँ पे इस तरह का दिक्कतें आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर बस्ती में हमारे आशा वर्कर्स है, हमारा आंगनवाड़ी से हम लोग आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी को भी टाइम टू टाइम लाइन लिस्टिंग इंग्लिश में बर्थ कितना बर्थ हुआ, कितना डेट हुआ, कितना इलिजिबल कपल है, उन लोगों को ये हम लोग इंस्ट्रक्शन दिया गया और ट्रेनिंग दिया गया कि हर महीना अपडेट करके रिपोर्ट पहुंचे। तो अगर जैसे कि आपके आपने बताया कि दूर दराज में जैसे नोमेड्स है जो याक चराते हैं या गाय चराते हैं, वो लोग दूर जंगल में बैठते हैं, तो उन लोगों का वहाँ पे अगर कोई डिलीवरी होता है, हालांकि हम लोग डिलीवरी जो हमेशा इंस्टीट्यूशनल के लिए ही हम लोग को उसको कोशिश करता है, या ANC जैसे कि आपका गर्भवती माँ को हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम मिनिमम 4 बार चेकअप के लिए आते हैं, और उसी समय हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप लोग डिलीवरी हॉस्पिटल में ही कर रही है, और ये जरूरी इसलिए है कि अगर दूर दराज में अगर वो डिलीवरी कोशिश करते हैं तो आपका मैटरनल इन्फेंट मोर्टिलिटी होने का चांसेस है, उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, या तो कई तरह का अगर होम डिलीवरी करता है जहाँ पे हॉस्पिटल सुविधा नहीं है वहाँ अगर डिलीवरी कोशिश करता है या होम डिलीवरी करने की कोशिश करता है, तो कुछ भी कारण उन लोगों को दिक्कत आ सकता है, या तो माँ का हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है या बच्चा के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चा को हमेशा हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल डिलीवरी करने का कोशिश करें। आपका रेडियो के माध्यम से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना भी चाहूंगा कि डिलीवरी जो आप हमेशा हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है ताकि मेटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी को या कुछ दिक्कतें से बचे। तो जैसे कि आपको बताया कि आपने बताया कि अगर होम डिलीवरी हो जाता है तो मैं आशा के लोग हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, और हम लोग हेल्थ इंस्ट्रक्शन को भी ये दिया जाता है कि जैसे कि डिलीवरी होने के साथ साथ हम लोग पोलियो हो गया, BCG होता है, ये सब दवाई जो ऑन बर्थ देता है इंस्ट्रक्शन, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाता है तो 0 डोज आपका OPV देते थे, BCG हम लोग दे देते, लेकिन अगर कुछ कारण अगर दूर दराज में पैदा हो जाते हैं या घर में पैदा हो तो मैं आशा का थ्रू या हेल्थ स्टाफ के थ्रू उन लोग तक पहुंचने का कोशिश करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब दवाई टाइमली पहुंचे, और अगर डिलीवरी घर में पहुंचे विद इन ए वीक या विद इन ए मंथ हम लोग को जो दवाई उन लोगों को मिलना है वो टाइमली दिलाने का कोशिश करता हूं।
1: एक बच्चे के स्वास्थ्य के सफर जो है माँ के पेट से ही शुरू होते हैं, गर्भावस्था के दौरान से शुरू होते हैं। तो जब कोई महिला गर्भवती होते हैं तो उनको टीकाकरण लगवाना कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: ये ऐसे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, टिटेनस टॉक्साइड TT बोलते हैं, तो वो देता है, आजकल हम लोग TD देते हैं, तो उसको गर्भवती होने के साथ साथ जैसे पता चल जाता है हम लोग एक इंजेक्शन देते हैं, फिर विद इन 1 मंथ फिर इंजेक्शन देते हैं। और जैसे कि आपका ये जो टिटनेस जो है आप नहीं लगाने के कारण आपका ड्यूरिंग डिलीवरी आपका जैसे बच्चे के जो अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेशन में काटना पड़ता है या उस तरह से कुछ गंदा चला जाएगा या उसका खून में कुछ, तो टिटनेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है मेटरनल माँ को भी बचाओ। अगर कोई कारण उसका अगर टिटनेस का बीमार लग जाता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो बच नहीं सकता, तो ये बहुत ही खतरा है। तो ये आपका गर्भवती के दौरान आपको ये TT का जो टीकाकरण है वो लगवाना बहुत ही जरूरी है।
1: और सब जैसे कि हमने हमारे चर्चे में इससे पहले जिक्र की थी कि अब जो है माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य जो है हमारे सरकार द्वारा दिए गए सुविधाओं के कारण लाभ होने के कारण अब जो है मृत्यु के दर जो है बहुत कम हो चुके हैं, ना के बराबर होते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे आज के ये चर्चा में आपने जितनी भी सलाह दी हमारे श्रोताएं जरूर सुने और अमल जरूर करें, और गर्भावस्था के दौरान छुपाए नहीं बल्कि अस्पताल आएं, अपनी जांच करवाएं और TD की टीकाकरण जो है जरूर लगवाएं। डॉक्टर साहब, हमारे आज के या कार्यक्रम के जो समय है अब समाप्त होने वाले हैं, तो आज आपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और हमें टीकाकरण के महत्व, टीकाकरण से क्या क्या फायदे होते हैं, नहीं लगवाने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। तो डॉक्टर साहब, मैं आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना डिस्ट्रिक्ट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर रंजन नीमा से टीकाकरण का महत्व विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:28 हुए हैं।

श्रोताओं, नीचे प्रस्तुत है हमारा अगला साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज। सुरों और धुनों पर आधारित यह कार्यक्रम साज और आवाज के तहत आज सुनिए हाउस नंबर 44 और गाइड फिल्मों से दो गीतों का साज और आवाज। नीचे प्रस्तुत है पहला साज हाउस नंबर 44 फिल्म से, जिसे सवारा है एसडी बर्मन ने।

चलिए श्रोताओं आनंद लेते हैं हाउस नंबर 44 के इस साज का हेमंत कुमार के आवाज के साथ। इस गीत को शब्दों में पिरोया है साहिर लुधियानवी ने।

श्रोता हूँ, अब इस सांस का मजा लीजिए। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाज में इस गीत को शब्दबद्ध किया है शैलेंद्र ने।

हाउस नंबर 44 और गाइड फिल्म के इन्हीं नगमों के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, अब सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एक सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा किया। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आधार ऐप को 4 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, जो सुविधाजनक और डिजिटल पहचान सेवा में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से 11 लाख से अधिक पते और 39 लाख मोबाइल नंबर लोग अपडेट कर चुके हैं। वहीं ऐप की बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक सुविधा का उपयोग 1.90 करोड़ से अधिक बार किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि आधार ऐप का बढ़ता उपयोग एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरने का संकेत देता है। विधायक निनोंग इरिंग ने कल डेपी नदी के बहाव को मोड़ने के काम का जायजा लिया, जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जा रहा है, और ग्रामीणों से इस काम पर नजर रखने को कहा। ग्रामीणों के अनुरोध पर विधायक ने इस काम के लिए कुछ फंड दिए, क्योंकि नदी अपने

0: बाएं किनारे को तेजी से काट रही है। डीपी मोली के स्थानीय ग्रामीणों ने इस काम के लिए एक अर्थ मूवर मशीन लगाई है। जल संसाधन विभाग नदी से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने की योजना को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विधायक ने गांव बूढ़ा और पंचायत सदस्यों से बहाव मोड़ने के काम की निगरानी करने का आग्रह किया। कल लोअर सुबनसिरी जिले में ज्ञाति टाका जनरल अस्पताल के ब्लड सेंटर के सहयोग से आपातानी बाप्तीस एसोसिएशन द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में 36 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया। इस कैंप से अस्पताल के जरूरी ब्लड स्टॉक में काफी बढ़ोतरी हुई। फाइव माउंटेन डिवीजन के सीओजी मेजर जनरल अमित नोटियाल ने आज मेजर बॉब खातिंग मेमोरियल म्यूजियम में तवांग के स्कूलों और एनजीओ को कंप्यूटर सेट और पारंपरिक नृत्य की पोशाक सौंपी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दोहराया कि सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना की प्रतिबद्धता सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह शिक्षा, संस्कृति और समावेशी विकास के जरिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए भी उतनी ही समर्पित है। मौसम विभाग ने आज पापुमपारे और लोहित जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने वेस्ट कमेंग, ईस्ट कमेंग, कुरुंगकुमे, पाके केसांग, ईस्ट सियांग, तिरप और चांगलांग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है तथा 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। फीफा विश्व कप के तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The lift-off took place at 12:05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him. Union Minister of Science and Technology Jitendra Singh also celebrated the success. Vikram 1 is India's first privately developed orbital launch vehicle designed and built by Hyderabad-based aerospace startup Skyroot Aerospace. Developed under Mission Agaman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 features three solid propellant stages and a liquid-fueled Raman engine in its orbital adjustment module for precise orbital insertion and maneuvers. In West Bengal, Union Home Minister Amit Shah today visited the Border Security Force camp at Jumaganj in Siliguri and interacted with BSF personnel. He also planted trees and attended the Prahadi Sammelan. Discussions were held on strengthening border areas, birth and death registration, and review of the law and order situation. The Aadhaar app has crossed 4 crore downloads, underscoring the growing trust of residents in convenient and digital-first identity services. The Ministry of Electronics and IT said that the app has facilitated over 11 lakh address updates since its launch. It informed that the app has also enabled almost 49 lakh mobile number updates, and residents have used the biometric lock or unlock facility of the app more than 19 million times. The ministry added that the increasing adoption of the Aadhaar app reflects its emergence as a one-stop digital platform for accessing a wide range of Aadhaar-related services. MLA Ninong Iring yesterday inspected the DP River course diversion work undertaken to control soil erosion and urged the villagers to monitor the work. The MLA provided some funds for the work following request from the villagers, as the river is seriously

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया दिलजली फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही कार्यक्रम कौमे तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे है, यानी अब वक्त हो चला है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा से आए फरमाइश के साथ, जो कि है मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत को रचा है शैलेंद्र ने और संगीत से सवारा है सचिन देव बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है मलकापुर से नारायण इंगले, सोपन तयारे और आशीष मुरहेकर तथा नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र के पीएस नवकर, निर्मला नवकर और विशाल नवकर के फरमाइश पर, जो कि है क्रांति फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है संतोष आनंद ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

श्रोताओं, अगला नगमा प्रस्तुत है गृह प्रवेश फिल्म से भूपिंदर और सुलक्षणा पंडित के आवाजों में, जिसकी फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा से। श्रोताओं, इस गीत को शब्दों में पिरोया है गुलजार ने और संगीत से सवारा है कानू रॉय ने।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
0: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: नशीली बोलियां।
1: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रूमानी और या दोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रस्थ।

दलित अरुणाचल न्यूज रील। रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, खिताबी मुकाबले में कल अकाने यामागुची से सामना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से, अर्जेंटीना और स्पेन कल फाइनल में होंगे आमने सामने। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। चेन्नई शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में अलीरेजा फिरोजा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। और भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। सुनते हैं सरफिरोजी की खास रिपोर्ट।
1: सेमीफाइनल में सिंधु पूरी तरह हावी नजर आई और वो 21-19, 15-10 से आगे चल रही थी। तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन को हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण हटना पड़ा और सिंधु को वॉक ओवर के जरिए फाइनल का टिकट मिल गया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच 4 अंकों की बढ़त बना ली। चेन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी मिनटों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम पॉइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चेन यू फी चोट से जूझती नजर आई और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। 31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया और अब वो दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। जापान ओपन का खिताब जीतने के लिए लक्ष्य के साथ सिंधु कल होने वाले फाइनल में जापान की अकाने यामागुची का सामना करेंगी। क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का ये पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वो 3 सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिनमें मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
2: फाइनल में जगह बनाने से चूकी फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगी। एक तरफ लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने की फ्रांस की उम्मीदों पर स्पेनिश

0: टीम ने पानी फेरा। वहीं दूसरी ओर मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी समय में गोल खाने के बाद इंग्लैंड को दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा। हालांकि सम्मान, मोमेंटम और पोडियम फिनिश अभी भी दांव पर है। फ्रांस को विश्व कप का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। वहीं इंग्लैंड भी 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने के करीब पहुंचता दिख रहा था, लेकिन सेमीफाइनल में ही इनके सफर पर विराम लग गया। प्लेऑफ के इस मुकाबले में अब फ्रांस निरंतरता के साथ उतरेगा। टीम एक बार फिर किलियन एम्बापे के शानदार अटैकिंग खेल पर भरोसा कर सकती है, जो लगातार दूसरे वर्ल्ड कप गोल्डन बूट की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं हैरी केन और जूड बेलिंगहैम की अगुवाई वाली इंग्लैंड टीम में किसी भी प्रतिद्वंदी को परेशान करने की क्षमता है, लेकिन डेस्चैम्प्स को जीत के साथ विदाई देने से फ्रांस को रोकने के लिए उन्हें और बेहतर ऑलराउंड खेल दिखाना होगा। एम्बापे और अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी के 8 गोल हैं। मेस्सी ने 4 गोल में सहायता की, जबकि एम्बापे ने 3 में। इंग्लैंड के हैरी केन और जूड बेलिंगहैम के 6-6 गोल हैं। उधर विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। अर्जेंटीना इससे पहले 6 फाइनल खेल चुकी हैं, जिसमें 3 बार उन्होंने खिताब अपने नाम किया। दूसरी ओर स्पेन ने दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले 2010 में उन्होंने नीदरलैंड्स को हराकर खिताब अपने नाम किया था। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर पीको का अनावरण किया। ये प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17 से 23 अगस्त तक खेली जाएगी। श्री मांडविया ने विश्व चैंपियनशिप का गीत भी लॉन्च किया। इस गीत में भारत की पूरी 16 सदस्यीय टीम नजर आएगी, जिसमें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी शामिल हैं। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि भारत में खेल संस्कृति का विकास हो रहा है और भारत खेलों का देश बनने की ओर अग्रसर है।
2: युवा शक्ति हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। उसको हार्नेस्ट करना है तो खेल का मैदान उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए, और इसलिए देश में स्पोर्ट्स आगे बढ़े, स्पोर्ट्स के एक इकोसिस्टम बने, स्पोर्ट्स युवाओं का लाइफस्टाइल का एक कल्चर बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स को सामाजिक दृष्टि से भी और सरकारी दृष्टि से भी बढ़ावा दिया जाए, एक पब्लिक मूवमेंट बने। स्पोर्ट्स को एडॉप्ट करके हम देश को स्पोर्टिंग नेशन के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
1: श्री मांडविया ने कहा कि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी इच्छुक है।
2: हमारा लक्ष्य क्लियर है, हमारा एजेंडा फिक्स है, रोड मैप भी तैयार है। मोदी जी ने कहा है कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स आयोजित करना है, उसके लिए भारत ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और हमने कॉमनवेल्थ के लिए बिड को जीत भी लिया है। 2030 में देश में कॉमनवेल्थ आयोजित होगा।
1: भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने दिल्ली में होने वाले इस आयोजन पर खुशी जाहिर की।
3: वी होस्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप अगेन, इट्स अ ग्रेट मोमेंट नॉट ओनली फॉर बैडमिंटन बट फॉर इंडियन स्पोर्ट इन जनरल। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ पुश इन द लास्ट फ्यू इयर्स इन मेनी स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट हैज ग्रोन ओवर टाइम, सो इट्स ओनली फेयर एंड टाइम दैट वी होस्ट अ प्रेस्टिजियस इवेंट लाइक द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दिल्ली इज एबल टू होस्ट दिस प्रेस्टिजियस इवेंट।
1: मुख्य कोच ने एशियन गेम्स से ठीक पहले आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता को भारतीय खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण बताया।
3: I think it's a wonderful event. It's also a great timing. We have the World Championships followed by the Asian Games. So the next 2 months are going to be very critical for Indian badminton. To have Sindhu reach the finals of Japan, to have Laksh, Ayush, you have Satvik and Chirag, some really good medal contenders.
1: अब चलते हैं सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच कल लॉर्ड्स में तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
4: बर्मिंघम में पहले मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम को कार्डिफ में खेले गए दूसरे मुकाबले में 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स इस श्रृंखला के निर्णायक विजेता का फैसला करेगा। भारत के लिए कार्डिफ में हार के बावजूद विराट कोहली का लय में लौटना एक बड़ी सकारात्मक बात रही, जो 65 रनों की शानदार पारी के दौरान आत्मविश्वास में नजर आए थे। हालांकि रोहित की फॉर्म

0: बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। पूर्व भारतीय कप्तान इस वर्ष 8 वनडे पारियों में सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा सके हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अस्वस्थ रहने के कारण कार्डिफ में नहीं खेल सके थे। अब भारत को निर्णायक मैच में अपने इस खिलाड़ी की वापसी की उम्मीद होगी। साल 2025 की शुरुआत से राहुल भारत के सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक रहे हैं और उनका औसत 50 से ऊपर रहा है। हालांकि लॉर्ड्स ने भारत के कई यादगार पल देखे हैं, लेकिन मेहमान टीम साल 2004 के बाद से इस मैदान पर कोई वनडे मैच नहीं जीत सकी है। इस सूखे को खत्म करने से न सिर्फ सीरीज जीती जा सकेगी बल्कि दौरे का समापन भी यादगार होगा। दूसरी तरफ कार्डिफ में जो रूट ने 99 रन की नाबाद पारी खेलकर एक बार फिर से खुद को साबित किया है। इस पारी ने न सिर्फ रूट का बल्कि पूरी इंग्लिश टीम का आत्मविश्वास बढ़ाया है। पूर्व कप्तान के नाम अब लगातार 5 वनडे मुकाबलों में अर्धशतक है। दूसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के सामने रूट का संयम इंग्लैंड का हौसला बढ़ाएगा, लेकिन भारत के मुख्य तेज गेंदबाज लॉर्ड्स में इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करेंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैट।
1: और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, पहला मुकाबला जहां गेंदबाजों के नाम रहा था, पिच से उनको मदद मिली थी, दूसरे मुकाबले में भी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या लगता है अगले मुकाबला में पिच किस तरफ रुख करेगी?
2: प्रशांत, अगर लॉर्ड्स की पिच की बात करें तो आमतौर पर ये तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर गेंदबाजों को काफी स्विंग देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर पहली पारी के यहाँ पर औसतन स्कोर की बात करें तो 232 रन का स्कोर बनाती है जो टीम पहले खेलती है, और दूसरी टीम का जो औसतन स्कोर है वो 200 रन के आसपास का है। 89 वनडे मुकाबलों में इस ग्राउंड पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, जबकि 40 मुकाबलों में जीत रनों का पीछा करने वाली टीम के हाथ लगी है।
1: विशेष, हर एक मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली नया कीर्तिमान रचते हैं, कल के मुकाबले में क्या कुछ नया करते नजर आएंगे दोनों खिलाड़ी?
2: जी, भारत के दिल और धड़कन कहे जाने वाले रोहित शर्मा और विराट कोहली कल 400वां इंटरनेशनल मुकाबला साथ में खेलने जा रहे हैं। कोहली और जो रोहित की जोड़ी है, इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनेगी। यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। सचिन और द्रविड़ ने भारत के लिए 391 मुकाबले साथ में खेले हैं।
1: और उधर क्रिकेट इतिहास के महान ऑलराउंडरों में से एक, वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी सर गैरी सोबर्स का कल निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। आईसीसी और बीसीसीआई ने इस दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी है। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खेल को गौरवान्वित करने वाले सबसे महान क्रिकेटरों में से एक सर गारफील्ड सोबर्स का दुखद निधन हो गया है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और वेस्टइंडीज क्रिकेट के साथ है। हम एक आईसीसी हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर को अलविदा कह रहे हैं। बीसीसीआई ने भी सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी असाधारण उपलब्धियों, कैरेबियाई क्रिकेट पर उनके स्थायी प्रभाव और दुनिया भर के खेल में उनके योगदान ने एक ऐसी यादगार विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सर गैरी सोबर्स ने 93 टेस्ट मैचों की 160 पारियों में 26 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से 8032 रन बनाए और 235 विकेट भी अपने नाम किए। और अब बात शतरंज पर। फ्रांस के ग्रैंड मास्टर अलीरेजा फिरोजा ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। चेन्नई में कल खेले गए दूसरे राउंड में उन्होंने भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को 69 चालों के बाद मात देकर टूर्नामेंट में 2 अंकों के साथ बढ़त हासिल कर ली है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को आगामी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही है। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ ओडिया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के

0: वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
4: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमरीका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं

श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रही। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हॉर्मुज जल

0: दक्षिण मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.

श्रोताओं, विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत कल दोपहर 3 बजे, कल शाम 4 बजे युवाओं पर केंद्रित मासिक कार्यक्रम युवावाणी, साप्ताहिक ममता कार्यक्रम रिक्षुंग नेरम कल शाम 5:35 पर, शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिले कव्वाली तथा रात्रि 8 बजे आपकी वजह फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, तो ये रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के चंद कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री संगे बम्पा सिरथीपा, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री कामेन्फो और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हेमंतो स्वर्गरी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मुझे यानी हिंदी उद्घोषिका गेंदनहामू को दीजिए इजाजत। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, शुभरात्रि, जय हिंद।